पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगन भी आखो भंडो खोवे दोस्ती भंडो चले राखो पंड मुआ पंड पालिए भंड खोवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान भंडो ही भांडे उपजाए भंडे बाज ना कोई नानक भंडे बागरा एको सचा सोए जित मुख सदा सा लागी है भागा रती चार नानक ते मुख उजले

0: को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
1: नाल आने दोस्ती बड़ा दूसे उने गो पानी अंदर लीक जो तिस दा थाओ न थियो महला दूजा होया ना करे कम आ न सके रास जेक अद चंगी करे दूजी भी वह रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चल खसम पाए हुरम तिसनू अगली ओ बजो पिदूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां, किछ कहना कहना जाए।

रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन पल उन्हें जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। सोए रही प्रभ खबर न जानी, होर भया बहुर पछतानी। प्रै प्रेम सहज मन अंद धरोरी, प्रभ मिलवे की लालसा, ताते आलस कहा करोरी। कर्म अमृत आन निसारियो, खिसर गयो भूम पर डारियो। साध मुहिलादि अहंकारी, दोष नाही प्रभ करना हारे। साध संग मिटे भरम अंधारे, नानक मेली सृजन हारे। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। सो कहो टल गुर सेविया, एहनस सहज दर्शन परसे है। गुरु कै जन्म मरण दुख होवै, सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी। सजन सच्चा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठिया। सोही है सबनांदा, सजन सच्चा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठिया। सोही है सबनांदा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। श्लोक महला तीजा। गुरमुख सेवना कीनिया, हर नाम ना लगो प्यार। शब्द साधना आयो, मर जन्म वारो वार। गुरमुख सेवना कीनिया, हर नाम ना लगो प्यार। शब्द साधना आयो, मर जन्म वारो वार। मन मुख अंध ना चेतई, कित आया।

हर नाम व्यापार, हर नाम की हमको सतगुर कारकुनी दी। हर नाम का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली कान गई। हर का नाम गुरमुख किन्ने विरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। हर नाम का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली कान गई। हर का नाम गुरमुख किन्ने बिरले त्याया, जिनको

रंग परंग नेक नजा अपन करतबा जी अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन।

लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खे लै सकल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते

राम दास साहिब जीओ। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। मारा अन्न दे गुणी निदान गुरु गरीबन।

कोई नौ न जान मेरा, निमानियों के मान गुरु, नितानियों के ता, नियोटियों की

तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सच वाले हो जिनकी

शरण परे की राखो शर्मा, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहै प्यासा, तुम हे शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा, राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी आहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन, कट कट के पट पट की जन, जब युद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हो, जेते बदन श्रेष्ट सब तार, आपे आपनी भूज उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव, आपे आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं भूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संक्रय कैठा, सगरी सृष्ट दिखाई अचंपाव, आद जुगाद स्वरूप सजम पाव,
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार असिख संघरो। दुष्ट जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्वय सकै न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल भांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो। सवैया आए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्य। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहें हम एक ना जान्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो हे बखान्यों दोरा।

अस गोविंद राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो तागा वह हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ सोआमी सो क्यो मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वड़ियाईया कह नानक सुन हो संत हो शब्द तर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते।

कबीर सात समुंद है मस करो कलम करो बन राय बसदा कागद जाओ करो हर जस लिखन ना जाए कागद दीप सब कर अर सात समंद्रन की मस कह काट बनस्पति ही सगरी लिख बेहूं के लेखन काज बन सरस्ती बकता करक जुग कोट गणेश के हाथ लिख काल कृपान बिना बिनती ना तौ तुमको प्रभ ने कर जय लिख कत है न छूटी खेन खिन फूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविय अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुरस छटिया तुद डिठ सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दावे सा सज्जन सचा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोइया।

साहिब जी जब जरिया तब होए भस्म तन रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई जब जरिया तब होए भस्म तन रह।

दंडावत बंदन अनेक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणाई।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जनों के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फ्रैजन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजो विस्माद भुख विस्माद भोग।

सचो सच आया उन्हें मंजे पैन रखो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया तू बख्शीश अग्नि नित्ते वे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई।

0: देखते जो सच सच बताया, जिसको देख तुम मेरे सच तीन सच कमाया, सतगुरु मेरे सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया,
1: विच दुनिया काहे आया।

शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रिदे ना बिचारो, रथ ना सो न गज सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शार, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपतनाथ शरण नानक जन, हे

प्रप्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुख।

0: हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सुच किरिया, चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंदब, जी तान प्रभ प्राण उदारी। ओट गही स्वामी समरथ, नानक दास सदा बलहारी।
1: आवती कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंधियो ना जात, विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात, रहो जन तूर लग। नीर ना साक्ष बोर, चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, सिदे हर नाम खग। उद्यम कर लागे बहु पाती, बिचरे अनेक साहतर बहु खटुआ। पसम लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंदे बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनेक भांत थाटे कर थटुआ।

कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो। कलयुग परमाने नानक गुर।

कर कृपा प्रभ साद संग मिले जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेले वाट हमारे खरी उड़ीणी खन्याह तिखी बहुत पे

सेख फरीदा पंथ समार सवेरा वाट हमारी खरी ओढ़ीणी खन्या हो तिखी बहुत पेड़ी।

बोलो जे पंजा प्यारे आ चौहान साहिब जादे आ चालियां मुक्ते आ हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छके आ देख चलाई ते गवाही देख के आन डिठ कीता तिन्ना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ते आन तार के खाल साजी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्या नाल चराए गए गुरद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया

ब्राह्मण का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे सिखानु सिखी दान, केस दान रहत दान, विवेक दान विसाह दान, पुरुषा दान।

दर्शन स्नान चौकियां झंडे डूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखां आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाने आंदे मान नेताने आंदे तान ने ओटे आंदी ओट धन धन श्री